मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर आई और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक्समत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026, 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ान EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मत्स्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है।

भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा

0: होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ान EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वरमेय थी अशोक शर्मा की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्ति पद।

सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम के स्वर में ये भक्ति पद।

सोनू निगम और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति पद।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये भक्ति पद।

0: सुमन कल्याणपुर और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख श्री हरीश कोटक का है।
1: वे बातें जो लंबे भाषणों या समझाइशों से प्रभावित नहीं कर पाती हैं, वो छोटे छोटे दृष्टांतों से सुनने वाले के मन में उतर जाती हैं, तदनुसार उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसा नहीं कि ये बदलाव फौरी तौर पर आता है, किंतु जब भी किसी मोड़ पे ये दृष्टांत स्मरण हो आते हैं तो व्यक्ति उस पर चिंतन अवश्य करता है। इतना ही नहीं, उस पर चलने का प्रयास भी करते करते सफल भी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति कम से कम गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से बच जाता है। इस संदर्भ में हमारे साहित्य की जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियों, तेनाली रामा की कहानियां, साथ ही ईसप, जैन जापानी कहानियां आदि अनेक देशों और भाषाओं में लिखी गई हैं। इन कथाओं में कई तो वास्तविक घटनाओं के माध्यम से ज्ञान की गूढ़ बातें और कई पशु पक्षियों के माध्यम से काल्पनिक किंतु तथ्यपरक बातें रहती हैं। अनुभव बताते हैं कि संत, महात्मा, प्रभावशाली वक्ता या कह लीजिए राजनेता भी इसके सहारे अपनी बातों को अलंकृत करते हैं। ये दृष्टांत हर वय, हर वर्ग, यहां तक कि बच्चों के कोमल हृदय को हल्के फुल्के अंदाज में सदाचरण का संदेश देते हैं। विशेषकर आज के दौर में बच्चे सूफियानी बातें, आदर्श या ज्ञान की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। माता पिता भी यदि अच्छी सच्ची बातें बताना भी चाहें तो उन्हीं के बेटे बेटी मुंह फेर कर चले जाते हैं। वहीं उन छोटे बच्चों को खरगोश, कछुआ, गिलहरी, अप्पू, पांडा, एक बंदर और दो बिल्लियों की बात आदि बताई जाए तो उसके माध्यम से प्रेषित संदेश उनके मानस पटल पर एक कौतूहल मिश्रित गुदगुदी उत्पन्न करते हैं जो सहज स्वीकार्य होते हैं। व्यासपीठ से श्री पांडुरंग जी, श्री डोंगरे जी महाराज, श्री रामकिंकर जी, स्वामी आत्मानंद जी, सद्गुरु जी, श्री श्री रविशंकर जी आदि अनेक संतों ने दृष्टांत के माध्यम से संक्षेप में सकारात्मक संदेश दृष्टांत देकर दिए हैं। दृष्टांत प्रशांत महासागर के सदृश होते हैं जो न केवल कहने वाले अपितु श्रवण करने वाले हर आयु के हृदय के अंतःस्थल को स्पर्श करते हैं और शीतल, शांत और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रबुद्ध वक्ता ही क्यों, माँ, बाबा या किसी समझदार व्यक्ति को यदि समझाइश सुनने वाला जनसमूह हो, स्वयं के बच्चों हो या साथ उठने बैठने वाली मित्र मंडली हो, दृष्टांत के सहारे बात गहराई तक पहुंचाई जा सकती है। आवश्यक नहीं कि हर दृष्टांत मौलिक हो या हकीकत के तराजू में तौला गया हो, ये समय के साथ परिष्कृत भी होते हैं, परिवर्तित भी होते हैं। एक बार की बात है, सन्यासी बाबा नागार्जुन के पास एक चोर आया जो चोरी करने से बाज आना चाहता था। उसने बाबा से अपने मन की

0: कही तो चोर के आश्चर्य के मध्य बाबा नागार्जुन ने कहा, तुम्हें जो करना हो तो करो, किंतु अपनी आत्मा से पूछकर पूरी जागृति के साथ करना। ऐसी जागृत अवस्था में चोरी के परिणाम जो न केवल तुम्हारे लिए अपितु जिसके घर चोरी हुई है उसकी दशा का भी भान रहेगा। इसके बाद उस चोर ने कभी भी चोरी न करने का संकल्प ले लिया। बुद्ध, महावीर, कबीर, विवेकानंद, संत जलाराम, तुकड़ोजी महाराज आदि का संपूर्ण जीवन ही अपने आप में पवित्र दृष्टांत का संदेश संजोए हुए है। इनके जीवन शैली ही जीवंत दृष्टांतों से भरी है, जो विशेषकर आज के अशांत वातावरण में अनुकरणीय है। विदेशों में भी लघु कथाओं के माध्यम से आनंदमय जीवन हेतु दृष्टांतों के संकलन प्रकाशित होते रहे हैं। प्रसिद्ध नाट्य शिल्पी शेक्सपियर का कहना था कि संक्षेप ही बुद्धि की आत्मा है। विश्व में किसी भी धर्म ग्रंथ में लेखक के हस्ताक्षर नहीं है, वे सत्य की कलम से लोक कल्याण के भाव से कोरे पन्नों पर आलेखित हैं, जो बांचने वाले के हृदय में स्वतः ही श्रद्धा का भाव उत्पन्न करते हैं।
1: ये था चिंतन आलेख श्री हरीश कोटक का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 201।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा पशुधन विषय है पशुओं के लिए पौष्टिक आहार अजोला। जानकारी देते हुए डॉक्टर आशुतोष दुबे।
1: सादर नमस्कार। आज अपने चर्चा का विषय है अजोला उत्पादन एवं पशु आहार में इनका उपयोग एवं महत्व। आप सभी जानते हैं कि पशु हर लगभग हर घर में दो या तीन चार पशु जो हैं रहते हैं और पशुपालन का कृषि में कितना विशेष महत्व होता है। परंतु आज के समय में सबसे मुख्य जो समस्या है वो है आहार का प्रबंधन कर, खासकर जहाँ दाने की जो लागत है वो दिन प्रतिदिन उसका रेट कीमत बढ़ते चले जा रही है। तो ऐसे में पशुपालकों को कहीं ना कहीं समस्या आती है कि कम से कम लागत में पशुओं से ज़्यादा उत्पादन एवं ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त। आज जो चर्चा करेंगे वो अजोला उत्पादन पर ही है। अजोला जो है एक जलीय पौधा है जो कि पानी की सतह पर आराम से उगता है। इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अजोला जो है कम लागत के एवं बिना मेहनत के किसी सामान्यता खरपतवार की तरह वो खुद ब खुद फैलने वाला एक पौधा होता है। इसके अलावा सबसे मुख्य जो खासियत है वो है इसका पोषण मूल्य। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, लगभग 20-30% प्रोटीन होता है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, लगभग 65-70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। आयरन भरपूर मात्रा में होता है, फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है। जिसके अलावा जो शुष्क तत्व होता है, ड्राई मैटर जो होता है, वो लगभग 85-90% तक अजोला में पाया जाता है। तो इस तरह से अपन अंदाजा लगा सकते हैं पोषण में कितना इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। पर कारी नहीं होने की वजह से पशुपालक बंधु जो है वो इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसका गुणवत्ता इसकी बहुत ज्यादा है, परंतु इसकी जो स्थापना है अजोला उत्पादन की उसमें बहुत कम लागत में आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए लगभग एक 10x6 फीट का गड्ढा खोदना है जिसमें लगभग 0.2 मीटर का जो गहराई होगी, जिसमें कि लगभग 10 सेंटीमीटर का पानी जो है आ सके। इसके अलावा इस गड्ढे में एक पॉलीथीन की शीट बिछा लेना है, उसमें मिट्टी डाल देना है, गोबर डालना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट थोड़ा सा और थोड़ा सा अजोला का पौधा डालना है। तो इसमें भी चरणबद्ध तरीके से उत्पादन विधि अपने को अपनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजोला का उत्पादन अपने को प्राप्त हो सके। तो पहले चरण में 10x6 फुट का गड्ढा खोदें। जगह का चयन करते समय ये ध्यान रखें कि थोड़ा

0: जगह हो जहां पर बाहर से पानी ना आए, ना ही अंदर का पानी की अपने आप निकासी हो सके। दूसरी बात, जगह का चयन करते समय ये ध्यान देना है कि वहां पर डायरेक्ट जो है धूप ना आती हो, सूरज, ऐसी जगह का चयन करना है। फिर उसमें पॉलीथीन शीट बिछा लें अच्छी तरह से, ताकि कहीं भी पानी का लीकेज ना हो। फिर उसके बाद 10 से 15 किलो मिट्टी डाल दें इस 10 बाय 6 फिट के गड्ढे में। मिट्टी, यदि छनी हुई मिट्टी लेते हैं तो उससे अजोला उत्पादन और ज्यादा अच्छा होता है। इस मिट्टी में फिर जो प्री डिकम्पोज्ड रहती है, जो पहले से थोड़ी सी सड़ी हुई गोबर है, उसको ले लें। लगभग 5 किलो गोबर उसमें अच्छी तरह से मिला लें। 10 सेंटीमीटर तक पानी डाल लें और उसके बाद उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल के अच्छी तरह से घोल लें। इसके अलावा 40 ग्राम जो है उसमें न्यूट्रिएंट मिक्सचर, जो कि रॉक फॉस्फेट और मैग्नीशियम सॉल्ट और म्यूरेट ऑफ पोटाश से मिलाकर बनाया जाता है, उसको उसमें डाल लें। और उसके बाद जब अच्छी तरह से जब घोल लिए हैं तो उसमें 500 ग्राम, लगभग आधा किलो अजोला कल्चर जो है मिला लें। अजोला, मैंने पहले भी कहा था, एक खरपतवार की तरह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उसको अपन आराम से आधा किलो मिला सकते हैं। और रख रखाव में ये ध्यान देना है कि जल स्तर जो है 10 से 15 सेंटीमीटर का यहाँ पर रहेगा। जहाँ जगह है वहाँ छायादार रहेगी। हर सप्ताह जो है थोड़ा सा गोबर का घोल डालना है और हर 15 दिन में थोड़ा सा 20 ग्राम 40 ग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला लेना है। और इस तरह से यदि मिला लें तो 20 से 24 दिनों में आपका जो है अजोला जो है तैयार हो जाता है। बड़ी ही आसानी से तैयार होता है और बड़ी कम लागत से होता है। गाय और भैंस को लगभग 1 से 2 किलो अजोला प्रतिदिन खिला सकते हैं। बकरी को 200 से 300 ग्राम रोज और मुर्गियों को 10 से 20 ग्राम खिलाने से निश्चित ही दूध उत्पादन वृद्धि दिखाई देगी। के अलावा वसा जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा और प्रजनन और उत्पादन क्षमता पशुओं की काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और आप लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।
1: पशुओं के लिए पौष्टिक आहार अजोला, हमारा पशुधन, इस कार्यक्रम में जानकारी दी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। भगवान जगन्नाथ यात्रा एक पूर्वावलोकन। रात 8:15 पर स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम सुनेंगे रात 10:00। नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:05 पर। आपके पत्र, श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा सुबह 9:00, इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर सुनिएगा संतोष दिवाकर को। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे ताहिरा सईद को और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मधुरानी और चंद्रमोहन वर्मा। सुबह 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरूद पर बजाया राग परज बसंत। दोपहर 1:30 सुनिएगा छत्तीसगढ़ी नाटक हंसा नियाओं, लेखक श्री जीवन यदुराही और निर्देशक मिर्जा मसूद। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल विश्व युवा कौशल दिवस, इस पर चर्चा, पत्र मिला और यादें। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात, चिट्ठी मिली पत्रोत्तर कार्यक्रम, बहुवर्षीय चारा नेपियर घास के सफल उत्पादन, इस विषय पर चर्चा। आज की सलाह, इसमें किसान भाई सुनेंगे घर को सुंदर बनाएं, लैंडस्केपिंग कराएं। जानकारी देंगे तोरणलाल साहू, सहायक प्राध्यापक, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग। प्रायोजित कार्यक्रम

एनसीईआरटी दोपहर 12 बजे, हमर हाथी हमर गुट शाम 5 बजे, सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, दोपहर 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे और रात 8 बजे तथा रात 9:15 पर। हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, भगवान जगन्नाथ यात्रा एक पूर्वावलोकन, ये कार्यक्रम सुनेंगे रात 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर। चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग मियाँ की टोड़ी। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरूद पर बजाया राग परब। सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आपके पत्र सुबह 8:30 पर और गांधी चर्चा सुबह 9 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा

0: आक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानां आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितं यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांशवित्तीयप्रौद्योगिकीसंस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य, तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां 44,900,000,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां संकटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् संकटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशीव संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषोणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडांगणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6 पराजितम्। अक्षरपटेलः स्वस्य उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अधिक कथा। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र

पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी

0: खुलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोता दोस्तों, कैसे हैं आप भाई? राजधानी रायपुर के आकाश में घटा छाई है, समय बीतता जा रहा है और हम अच्छी बारिश की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मित्रों, समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। अब देखिए ना, साल 2026 का सातवां महीना जुलाई भी आधा बीत चुका है। समय वाकई किसी के लिए नहीं रुकता। समय की कीमत उस किसान से पूछिए जो कृषि कार्य में समय से थोड़ा पिछड़ गया हो। समय की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी ट्रेन या बस एक दो मिनट के लिए छूट गई हो। समय की कीमत उस छात्र से पूछिए तैयारी के लिए थोड़ा कम समय मिलने से एक दो नंबर के लिए सफलता से चूक गया हो। मित्रों, समय हर किसी के पास होता है जब समय पर समय की डोर को थामकर समय से आगे निकल जाया जाए। आज की भागम भाग जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, किंतु इतिहास साक्षी है। जिन्होंने भी इतिहास बदला है या फिर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया है, कुदरत ने सभी को 24 घंटे का ही समय दिया है। समय दर्पण है जिसमें हम देखते हैं अपने सुख दुख के अक्स। बीते कल के पन्ने सचमुच अनमोल और सुनहरे होते हैं। अतीत के पन्नों पर हम देखते हैं अपने बीते कल का हर्ष विषाद खुशी गम। बीते कल की यादें सुखद भी होती हैं और दुखद भी, किंतु अक्सर हम अतीत के उन पन्नों में खो जाते हैं जो पन्ने हमें सुखद एहसास कराते हैं। उनकी यादें उनकी तमन्ना, वक्त कितना बेशकीमती है इन दिनों।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोता दोस्तों, प्रदेश में संचालित महिला हेल्पलाइन 1-1-181 महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा परामर्श और त्वरित सहायता उपलब्ध करा रही है। घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, मानव तस्करी, बाल विवाह, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक और अन्य संकट की स्थितियों में यह सेवा मदद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। राज्य के किसी भी हिस्से से टोल फ्री नंबर 1-1-181 पर कॉल कर सहायता ली जा सकती है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार के सहयोग से संचालित यह सेवा सभी वर्गों की विवाहित, अविवाहित, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के साथ साथ बालिकाओं के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी इस हेल्पलाइन के माध्यम से सलाह, मार्गदर्शन, संरक्षण और सहायता प्राप्त कर सकती हैं। घर या बाहर कहीं भी हो किसी प्रकार की हिंसा अथवा संकट का सामना कर रही महिला को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना, सखी वन स्टॉप सेंटर और अन्य संबंधित सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य है। हम आपको बता दें कि संकटग्रस्त या जरूरतमंद महिला किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन से टोल फ्री नंबर 1-1-181 पर कॉल कर सकती हैं। हेल्पलाइन में मौजूद टेलीकॉलर और परामर्शदाता तत्काल मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराते हैं। सभी जिलों में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर तथा 112-112 के साथ इस सेवा का एकीकरण किया गया है, जिससे तत्काल मदद मिल सके। हेल्पलाइन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से केस फाइल स्वतः संबंधित विभाग या एजेंसी को तत्काल भेज दी जाती है, जिससे कार्रवाई में तेजी आती है। तो रहें अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, अगली सूचना माटी पुत्र किसान भाइयों के लिए। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस बार किसानों को एग्रीकेस्टेक पंजीयन के साथ साथ धान पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बारिश का सीजन शुरू होते ही जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग ने किसानों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। रायपुर जिले में अब तक 96.88% किसानों ने धान पंजीयन का नवीनीकरण करा लिया है, जबकि अभी भी कुछ किसान बचे हुए हैं। विभाग ने शेष किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीयन पूर्ण करा लें। खाद्य और सहकारिता विभाग के अनुसार आगामी 31 अगस्त तक एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक कृषि साग सहकारी समिति में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी किसानों का पंजीयन, खसरा मैपिंग, बैंक खाते और नॉमिनी संबंधी जानकारी अपडेट कराने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। किसान है तो जहान है। किसान सरकार की योजनाओं के प्रति सरकार रहें, सतर्क रहें और सुने ये खूबसूरत गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, शनिवार 18 जुलाई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 15 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर इस प्रकार हैं: 4003482, 4003482, 4003483, 4003483, 4003484, 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता STD कोड 07710771 लगाना न भूलें। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। इस सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोता दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए रायपुर ज़िले में 13 से 18 जुलाई तक विशेष HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण सप्ताह चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत 14 और 15 वर्ष की पात्र किशोरियों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अवधि में अपनी बेटियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। जिला टीकाकरण विभाग के मुताबिक शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग तथा आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। HPV संक्रमण के कुछ प्रकार सर्वाइकल कैंसर के कारण बन सकते हैं और समय पर टीकाकरण से इसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हाल ही में मीडिया के प्रकाश में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 में 10 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे अधिक पाए जा रहे हैं। मीडिया के प्रकाश में एक और रिपोर्ट के मुताबिक गर्भाशय कैंसर का ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा कारण कम उम्र में शादी और स्वच्छता मेंटेन न करना है। वहीं शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमुख वजह देरी से शादी, बच्चों को स्तनपान न कराना और बदलती जीवन शैली तथा गलत खानपान है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच न होने से बीमारी दूसरे से तीसरे स्टेज पर पहुंच जाती है, जिससे इलाज बेहद जटिल हो जाता है। तो 14 से 15 वर्ष की पात्र किशोरियों को निःशुल्क टीका अवश्य लगवाएं। अपनी सेहत के प्रति रहें सतर्क और सुनें ये खूबसूरत गीत।

खुशदों। सरकार हर वर्ग के विकास और खुशहाली का ध्यान रखती है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों को पहले की तुलना में दोगुना अनुदान ज्यादा मिलेगा। सरकार ने योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50,000 रुपये की अनुदान राशि बढ़ाकर सीधे 1,00,000 रुपये कर दी है। सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई अनुदान राशि से अधिक श्रमिक ई रिक्शा खरीदकर अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना का उद्देश्य ये भी है कि श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना। बढ़ी हुई सहायता राशि से ई रिक्शा खरीदने में आने वाली आर्थिक बाधाएं काफी हद तक कम होंगी। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सब लग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इन दिनों फर्जी ई चालान की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। इससे बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल एम परिवहन ऐप का ही इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यदि आपके मोबाइल पर ई चालान का संदेश आए तो सबसे पहले भारत सरकार के अधिकृत एम परिवहन ऐप पर जाकर चालान की जाँच करें। चाहें तो इसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो कालीबाड़ी रायपुर स्थित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर जुर्माना अदा कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर कई थर्ड पार्टी ऐप उपलब्ध हैं जो वाहन की जानकारी देखने और ई चालान जमा करने की सुविधा देते हैं। ये ऐप अपनी सेवा के बदले अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं, इसलिए वाहन मालिक केवल सरकार के अधिकृत वेबसाइट echalan.parivahan.nic.in का ही उपयोग करें। इससे चालान का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है। श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

शुद्ध दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप .cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा सकती है। और इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम

0: क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसर

0: पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जल

0: मार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। 3 भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका

ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: after 2-0 victory over France, Argentina to take on England in the second semi-final tonight. And in cricket, India beat England by 6 wickets in the first ODI of the 3-match series at Edgbaston. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण आपके पत्र।

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और इंदु का नमस्कार।
0: इंदु जी, देखिए बारिश कुछ दिनों के लिए आई, फिर झलक दिखाकर पता नहीं कहाँ चली गई और हम सभी को फिर से बारिश का इंतजार है, लेकिन हमारे श्रोताओं के पत्रों का इंतजार तो भाई हर हफ्ते हमें रहता है और हर हफ्ते हमें भरपूर पत्र मिलते हैं। तो बताइए, ये पहला पोस्टकार्ड आपके हाथ में किसका है?
1: दीपक जी, ये पहला पोस्टकार्ड है मगरलोड से पुनुराम साहू का।
0: जी,
1: लिखते हैं, 28 तारीख को श्रोता समूह मगरलोड के हम सभी सदस्यों ने एक जगह बैठकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। प्रातः 11 बजे से 11:30 तक हिंदी में, तत्पश्चात छत्तीसगढ़ी अनुवाद श्री संजय पांडे जी से सुने। 1 घंटे तक सुनने के बाद सभी श्रोताओं ने अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण पर, पेट्रोल डीजल खपत कम करने के उपाय पर, खेत बचाव के तहत मिट्टी की उत्पादन क्षमता सुरक्षित रखने हेतु रासायनिक खाद का उपयोग न करने संबंधी सुझाव आदि बातों पर समीक्षा करते हुए विस्तृत चर्चा की। इस महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के माध्यम से देश और विदेश के श्रोताओं तक बहुत सारी नई नई बातें पहुंचती हैं इंदु जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके लिए, हम सबकी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए जो रास्ता बताते हैं, जो उपाय बताते हैं, उस पर हम भी अमल करते हैं और अपने आप को पूर्ण संतुष्टि के साथ, भविष्य के सुनहरे सपनों के साथ आगे बढ़ते हुए पाते हैं। इस पत्र के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सिमगा से लवकुश और प्रहलाद सेन लिखते हैं, 28 जून को प्रसारित सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर कार्यक्रम हमें बेहद ही ज्ञानोपयोगी, समाजोपयोगी के साथ कर्णप्रिय लगा। कार्यक्रम की शुरुआत इतिहास के पन्नों के साथ समाज सेवक नेल्सन मंडेला जी के आदर्श वाक्य, असंभव को संभव बनाया जाता है। ये बातें हमें बेहद प्रेरक लगी। आर्थिक सुधारों में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के विचार देशभक्ति पूर्ण लगे।
0: नमस्कार रायपुर के हर अंक में हमारे प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक साथी हमारे श्रोताओं के लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं इंदु जी, और वो जो विशेष दिन जिस दिन ये कार्यक्रम प्रसारित होता है उस दिन के महत्व के बारे में भी बताया जाता है, और इससे यकीनन हमारे श्रोताओं का ज्ञान काफी बढ़ रहा है, आपके पत्र से पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको। और ये अगला पोस्ट कार्ड किसका है?
1: अगला पोस्ट कार्ड है शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा का। लिखते हैं, 30 जून आषाढ़ मास के प्रारंभ में श्री मोहन अग्रहरि का चिंतन आलेख भारतीय जीवन दर्शन परिवार धर्म एवं संस्कार के अंतर्गत श्री दीपक हटवार जी ने अपने वाचन में जितने उदाहरण दिए वे सभी प्रेरणादायी और आत्मसात करने योग्य हैं। साधुवाद। शीतलानगर से शिव चंद्राकर लिखते हैं, मानवीय गुण कर्म स्वभाव में सन्निहित है। उत्थान का आधार है सही दिशा का निर्धारण करना और सज्जनता का आचरण अपनाना। नैतिकता पर केंद्रित 6 जुलाई का चिंतन हृदय स्पर्शी रहा। चिंतन की ही तारीफ में ये पत्र है कोरदा से कलीराम।

0: यादव का।
1: इंदु जी, देखिए, अलग अलग दिनों में प्रसारित चिंतन को हमारे श्रोताओं ने बहुत गौर से सुना, और चिंतन में कही गई बातें हमें जीवन के आदर्श, नैतिकता के पालन और सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ हम अपने मानवता, अपने परिवार और समाज को एक मजबूती प्रदान करते हैं, और यही मजबूती राष्ट्र उत्थान में सदैव हमारे काम आती है। चिंतन को गौर से सुनकर पत्र भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पत्र मेरे हाथ में है बेमेतरा से हेमलता और योगिता कुमारी सारथी का। ये लिखते हैं, 6 जुलाई को सौम्या रिजवी द्वारा प्रस्तुत नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सुना, जिसमें बचपन की बरसात की यादों को ताज़ा किया गया और बचपन में बरसात में किस तरह से कागज़ की कश्ती बनाकर खेला करते थे, और बड़ों की थोड़ी सी डांट भी पड़ा करती थी, और उसके अलावा तीजन बाई की जीवन यात्रा पर भी इन्होंने जानकारी दी। साथ ही इन्होंने बारिश के मौसम में पर्यटन स्थलों में जब भी घूमने जाएं तो जलप्रपात या इस तरह के स्थलों पर सावधानी बरत कर ही घूमने जाएं। इस तरह की जानकारियों से युक्त नमस्कार रायपुर की प्रस्तुति के लिए इन्होंने सौम्या रिजवी को बधाई दी है। तो भाई, आपकी बधाई हम हृदय से स्वीकार करते हैं, और सौम्या रिजवी जी के साथ साथ नमस्कार रायपुर को प्रतिदिन प्रस्तुत करने वाले हमारे सभी उद्घोषक साथियों तक भी आपकी बधाइयां हम पहुंचा रहे हैं। और ये अगला पोस्टकार्ड आपके हाथ में किसका है?
0: 5 जुलाई को आप मन के गीत प्रस्तुत किया पिंकी दुलानी ने। इसकी तारीफ में ये पोस्ट कार्ड है कोरदा लवन से भूधर प्रसाद और गुलशन कुमार वर्मा का, भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम, भाटापारा से ही चोवा राम और हरीश वर्मा का।
1: तो भाई, हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में आपके पोस्ट कार्ड पाकर हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, और यूं ही हमारे कार्यक्रमों से आप जुड़े रहें। प्रस्तुतकर्ताओं के उत्साहवर्धन में प्राप्त आपके ये पत्र हमारे इस कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है। इन पत्रों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी, आज के सारे ही पोस्ट कार्ड आपने पढ़ लिए,
0: जी
1: अब आपके हाथ में मुझे ये ईमेल नज़र
0: दीपक
1: आ रहा है, तो बताइए ये पहला ईमेल किसका है?
0: जी, पहला ईमेल है रश्मि साहू जे रामकरण साहू मोहदी मगरलोड से। लिखते हैं, 30 जून को प्रसारित मोर भुइया कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा विषय पर डॉक्टर राजन यादव जी और सरला शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ के कवियों द्वारा यहाँ की संस्कृति और लोक परंपरा का जो समसामयिक और सुंदर लेखन अपनी रचनाओं में किया, उसकी बहुत ही सुंदर समीक्षात्मक व्याख्या आप दोनों के द्वारा की गई। इसके साथ ही बी रघु कुमार जी द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा की शिक्षा और शिक्षण कार्य में प्रगति और प्रशासनिक सहयोग व आदान प्रदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मोर भुइयां कार्यक्रम के संपादक महेंद्र साहू जी और आकाशवाणी परिवार रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मोर भुइयां के इस अंक में छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष पर जो बातचीत की गई थी वो वाकई बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक बातचीत थी इंदु जी।
0: जी
1: और इसे सुनकर हमारे श्रोताओं को भी अपने राज्य की प्रगति के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी मिली, और इसके अलावा हमारे अंचल की संस्कृति की खुशबू मोर भुइयां के कार्यक्रम से चहुओर बिखर रही है, जिसे आप महसूस करते हैं और अपने पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
0: खुटगांव खुर्सी पार गरियाबंद से टिकेश्वर ध्रुव और कान्हा लिखते हैं, 7 जुलाई को नमस्कार रायपुर सुना, जिसमें बारिश के मौसम में अपने खान पान और अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें इसके बारे में जानकारी मिली। हमें बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी केंद्र को ढेर सारी बधाई।
1: भाई, अपने स्वास्थ्य के प्रति तो सदैव हमें जागरूक रहना चाहिए, और नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में समय समय पर मौसम के अनुरूप जानकारियां दी जाती हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जिन्हें आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धरसीवा से छेदूलाल यादव और सीता यादव लिखते हैं, 8 जुलाई को नमस्कार रायपुर में प्रस्तुतकर्ता शशांक खरे जी ने बहुत सारी जीवन की उपयोगी जानकारियां दी, जिसमें महिलाओं के लिए एक विशेष जानकारी जो कैंसर के टीका HPV के बारे में थी, टीके से सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है।

0: अक्सर गांव में गर्भाशय कैंसर और शहर में ब्रेस्ट कैंसर अत्यधिक हो रहा है। इसीलिए शासन द्वारा कई अस्पताल में टीके की सुविधा दी जा रही है। इस महत्वपूर्ण जानकारी हेतु धन्यवाद।
1: भाई देखिए, नमस्कार रायपुर कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां और प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाया जाता है उसकी भी जानकारी दी जाती है इंदु जी, ताकि हमारे जी। कोई भी श्रोता इस अभियान से और इस तरह के टीके से वंचित न रहें। कार्यक्रम आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार और सुजाता साहू लिखते हैं, 7 जुलाई को मोर भुइयां कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के खेत किसान और साहित्यकार विषय के बारे में वार्ता श्री अशोक नारायण बंजारा से सुनने को मिली। साथ ही श्री शेष नारायण गुप्ता से कहानी नोनी के पाठ सुनने को मिली तथा मधु तिवारी जी से बहुत ही सुंदर कविता पाठ सुनने को मिला। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी साहित्यकार और कवियों सहित बहुत सुंदर संपादन के लिए श्री महेंद्र साहू जी को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर और कचरीबाई देवांगन का, धमतरी से रामचंद और सविता माखीजा का।
1: मोर भुइयां के इस अंक में साहित्य की विभिन्न विधाएं थी इंदु
0: जी।
1: एक तरफ बहुत ही मार्मिक कहानी थी, बहुत ही जानकारी पूर्ण वार्ता थी, और फिर कविता का आनंद तो हमारे श्रोता उठाते ही हैं, जो कि कई बार ऋतु पर, पर्व पर केंद्रित होती है, जीवन के विविध प्रसंगों पर केंद्रित होती है। तो इस तरह से साहित्य का ये संगम मोर भुइयां के माध्यम से होता है, और इस संगम की सरिता का पवित्र जल हमारे सभी श्रोताओं को तृप्त करता है, जानकर हमें खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: करही भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर शारदा निर्मलकर लिखते हैं, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य की जीवन दिशा ही बदल देता है। सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में हम संगीत के सहारे अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। कहते हैं आध्यात्म और संगीत का गहरा संबंध है। 10 जुलाई को कार्यक्रम इनसे मिलिए में पखावज व बांसुरी के कलाकार शुभाशीष जी से दीपक हटवाड़ जी की बातचीत हमें सार्थक और ज्ञानवर्धक लगी। इस सफल भेंट वार्ता के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
1: इनसे मिलिए के इस अंक में पखावज से जुड़े एक कलाकार से हमने बातचीत की थी इंदु जी, जो कि इस वक्त PhD भी कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र के विषय पर गहन अध्ययन करते हुए। तो ऐसे कलाकारों से समय समय पर हम मुलाकात करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है और हमारे श्रोताओं को तो और भी बहुत अच्छा लगता है। आपका पत्र हमें बता रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: लोरमी मेघा पारा से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल लिखते हैं, 9 जुलाई को लेकर आए नमस्कार रायपुर, जिसमें रेलवे टिकट और सावधानी बरतने संबंधी अनेक जानकारी सुनने को मिली, साथ ही मीठे मीठे फिल्मी गीत भी सुनने को मिले। इसके लिए संजय पाठक जी को और आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत बधाई।
1: नमस्कार रायपुर के इस अंक के माध्यम से रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी जानकारी थी, जिसे आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला ईमेल आपके हाथ में किसका है?
0: अगला ईमेल है बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम साहू और योगेश्वर साहू का। लिखते हैं, 11 जुलाई शनिवार को लोक संगीत में भरत लाल हरिंद्र और साथी से मोर छत्तीसगढ़ के माटी तोला करो परनाम जैसे सबो गीत मल्ला सुन के मन गदगद हो गए। तेखर बर आकाशवाणी ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के संग्रहालय से इन जैसे कलाकारों के कई गीत जब भी निकलते हैं, गूंजते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, तो श्रोताओं का घर आंगन भी मधुर संगीत से गुंजायमान हो जाता है, जिसे आपने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देवरी भाटापारा से हाव्या रजक और तानिया रजक लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर से आपके पत्र कार्यक्रम में माह के अंतिम बुधवार को श्रोता साथियों से जो बातचीत की जाती है, उसे प्रत्येक बुधवार को आपके पत्र कार्यक्रम में हर सप्ताह एक श्रोता से बातचीत की जाए और इसे बहुत शीघ्र ही शुरू की जाए। श्रोता साथियों की संख्या तो हजारों की संख्या में है, अतः इसे जल्दी ही शुरू करें।
1: इंदु जी, इस तरह के सुझाव हमारे पास पहले भी आए हैं, तो फिलहाल तो अंतिम बुधवार को हम अपने श्रोता से बातचीत करते हैं, और बातचीत में जो अवधि होती है लगभग 5 मिनट की होती है, तो वो 5 मिनट का समय लेने से हमारे अन्य श्रोताओं के पत्रों में हो सकता है हमें कटौती करनी पड़े। तो फिलहाल माह के अंतिम बुधवार को श्रोता से बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत आप सुनिएगा जी।
0: वरुण राठौर और भारती राठौर रायपुर से लिखते हैं, इनसे मिलिए कार्य

0: कार्यक्रम में 3 जुलाई को पहुना थे अभिनेता और रंगकर्मी रघुवीर यादव। भेंटकर्ता सुप्रिया भारतीयन। निसंदेह यह बातचीत अत्यंत दिलचस्प रही। यादव जी ने अपने बचपन के संस्मरण इस अदा से सुनाए कि उनकी अतीत की घटनाओं के चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पर उभर कर जीवित हो उठे। इस सुंदर दिलचस्प भेंट वार्ता के लिए रघुवीर जी सुप्रिया भारतीयन जी को बधाई।
1: प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव जी से सुप्रिया जी द्वारा की गई ये बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आई और ऐसे कलाकार जब भी इस कार्यक्रम में आते हैं तो उनकी जीवन यात्रा के बारे में सुनकर जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है इंदु जी। और समय समय पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में, चाहे वो फिल्मों से जुड़े कलाकार हों, रंगमंच से जुड़े कलाकार हों या विविध क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: रोहासी पलारी से श्यामलाल साहू युवराज साहू लिखते हैं, 10 तारीख को नवा बिहान के अंतर्गत पर्यावरण विद श्री राम नारायण यादव से बातचीत सुनी। श्री राम नारायण यादव ने एक पेड़ माँ के नाम में सभी लोगों को पेड़ लगाने के बारे में जानकारी दी और स्वयं पेड़ लगाकर अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया और पेड़ पौधे लगाने के लिए एक सुंदर कविता सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके लिए राम नारायण यादव जी और बीरभान साहू के संग आकाशवाणी रायपुर को कोटिश बधाई।
1: एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान इन दिनों चल रहा है और बारिश के मौसम में पेड़ लगाने के लिए सबसे उत्तम समय होता है इंदु जी, तो इस समय का हम सभी लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 11 जुलाई को प्रसारित बातों बातों में कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े से विकल्प शुक्ला की भेंट वार्ता का प्रसारण किया गया। यह वार्ता बस्तर क्षेत्र में हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण तथा कुपोषण जैसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित रही। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद अब विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार, आजीविका और स्वसहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की महिलाएं भी अब अन्य क्षेत्रों की महिलाओं की तरह विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ना चाहती हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। वार्ता में बस्तर में बच्चों के कुपोषण की समस्या का भी उल्लेख किया गया। मंत्री जी ने बताया कि आदिवासी अंचलों में कुपोषण दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और जन जागरूकता के माध्यम से बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कार्यक्रम के तारीफ में ये मेल है रायपुर से रतन और कोकिला जैन का।
1: प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री जी से लिए गए इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे प्रदेश में महिला और बाल विकास के लिए विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची और हम उम्मीद करते हैं कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ हमारे श्रोता साथी अवश्य उठाएंगे। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे लिखते हैं, 11 जुलाई को प्रसारित समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में एक भेंट वार्ता के माध्यम से हमने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल से दीपक हटवार जी की बातचीत सुनी, जिसका विषय था हड्डियों के प्रमुख रोग, कारण, लक्षण और उपचार। इस बातचीत द्वारा हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस वार्ता के माध्यम से हमें यही जानने को मिला कि हड्डियों को कमजोर और नाजुक बनाने वाली कई बीमारियां होती है जिनसे हम अनजान रहते हैं, जो मुख्य रूप से पोषण की कमी, बढ़ती उम्र और अनुवांशिकी कारणों से होती है, जिसमें हड्डियों के प्रमुख रोग ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया और अस्थि मज्जा संक्रमण शामिल है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग और सही जीवन शैली बेहद जरूरी है और साथ ही दुर्घटनाओं से हड्डियों में होने वाली क्षति का उपचार किस तरह संभव हो सकता है, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें सुनने व समझने को मिली जो हम

0: सभी के लिए बेहद उपयोगी व शिक्षाप्रद रही। एक उपयोगी जानकारी के लिए डॉक्टर अग्रवाल जी व दीपक जी सहित आकाशवाणी रायपुर को हमारी ढेर सारी बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है रायपुर से वैभव और चिराग जैन का, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद और चंद्रकांत वर्मा का।
1: हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों के साथ जुड़ी होती हैं हिंदू जी, और इस भेंटवार्ता के माध्यम से इस समस्या के समाधान के उपाय बताए गए और हमारी अपनी दिनचर्या में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ये भी बताया गया, ताकि हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक के आर साहू लिखते हैं, आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार को दोपहर की सभा में भी प्रसारित किया जाए, उसे छत्तीसगढ़ी भाषा में ही प्रसारित किया जाए।
1: आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया है, और ये अगला ईमेल किसका है?
0: अगला ईमेल है ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता लिखते हैं, 12 जून को हमें कानून की बात कार्यक्रम सुनने को मिला, जिसमें हमें स्थानीय लोक अदालत के बारे में बताया गया कि हम छोटे छोटे कार्य जैसे पानी, बिजली, रोड, बैंक संबंधित काम, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा स्थानीय लोक अदालत में समझौता करा सकते हैं और जिला न्यायालय में जमीन संबंधित मामले का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे गौरव सपति और बातचीत कर रहे थे रमा शंकर जी। कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। अच्छे एवं सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को साधुवाद।
1: कानून की बात के हर अंक में भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी दी जाती है, जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, और हर आम व्यक्ति अपने देश के कानून के प्रति जागरूक हो, यही इस कार्यक्रम के प्रसारण का उद्देश्य है। पत्र के लिए धन्यवाद।
0: गांव तेंदू भाटा मगरलोड से यशस्वी कुमार निषाद भास्कर निषाद लिखते हैं, 5 जुलाई को फोन इन फरमाइश कार्यक्रम को हमारी प्रिय अनुभा अग्रवाल दीदी ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। फोन में श्रोता साथियों से बातचीत और उनकी पसंद के गीत सुनने को मिले। कार्यक्रम के रोचक प्रस्तुति के लिए अनुभा अग्रवाल दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है गांव कुटेना पांडुका गरियाबंद से टीकम और भूषण साहू का। तेंदू भाटा मगरलोड से मोहेश्वरी निषाद लक्ष्मी निषाद लिखते हैं, 6 जुलाई को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम को प्रस्तुत किया प्रवीणा त्रिपाठी दीदी ने। कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। गंडई पंडरिया से शिवा यादव राज यादव लिखते हैं, 8 जुलाई दिन बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी लोक गीत सुनो कार्यक्रम को लेकर आए हमारे बीच शशांक खरे जी। जैसे बारिश का मौसम होता है तभी हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक पर्वों के गीत आकाशवाणी रायपुर में सुनने को मिलते हैं। आकाशवाणी की जितनी भी तारीफ करें कम है। ऐसे मनमोहक और आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है आवरा डबरी से श्याम लाल मोंगरा साहू का, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत प्रमिला मरावी का, भुरसुदा से गजेंद्र और चिराग सेन का, भीमकोच परपोंगी से संतोष गुप्ता और देवकी गुप्ता का। कुई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 9 जुलाई के ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के शानदार गीत सुनाए, जिसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए संजय पाठक और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी राजकुमारी मरावी लिखते हैं, 10 जुलाई के छत्तीसगढ़ी फरमाइशी सूर सिंगार कार्यक्रम में हमर मयारू दीदी तारकेश्वरी आसुदानी जी श्रोता संगवारी मल्ला भेजे गए ईमेल पाती और नाव शामिल करके बहुत सुघर सुघर गीत सुनाइन, जेखर मनमोहक प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला कोरी कोरी बधाई। इसी कार्यक्रम के तारीफ में ये मेल है सुखनंदन और शिवरानी चंद्रवंशी का, इन्होंने पता नहीं लिखा है, टेकापार बालोद से चिंताराम रवि प्रकाश यादव, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार योगेश साहू। ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन उर्वशी देवांगन लिखते हैं, 11 जुलाई के आपके मीत ये गीत कार्यक्रम बहुत

0: अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता अनुभा अग्रवाल के गीतों का चयन पसंद आया। ईमेल ज्यादा से ज्यादा शामिल किया गया। सफल प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है लोरमी ग्राम करुहा नार से गोमती और काजल रजक का, पिपरिया से कमलकांत और दीपा रिमझिम गुप्ता का, भुरसुदा से भगवानी और संतोषी सेन का। गंडई टिकरी पारा से दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन लिखते हैं, 12 जुलाई के प्रसारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। श्रोताओं से बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए तारकेश्वरी आशुदानी जी को हार्दिक बधाई।
1: इंदु जी, देखिए हमारे विविध फरमाइशी कार्यक्रम जो कि अलग अलग दिनों में प्रसारित हुए पिछले हफ्ते, उन सभी कार्यक्रमों की तारीफ में इतने सारे ईमेल आए हैं और हमारे ये श्रोता रेडियो के करीब आ जाते हैं जब इनका पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो इन कार्यक्रमों से आपका भरपूर मनोरंजन यूं ही होता रहेगा। पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलने का वक्त हो रहा है, तो चलते चलते बता दें ईमेल आईडी raiapkepatra1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो अगले हफ्ते आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
0: और इंदु को। नमस्कार।

आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, भगवान जगन्नाथ यात्रा एक पूर्वावलोकन, ये कार्यक्रम सुनेंगे रात 8:15 पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। फिल्म संगीत रात 10:00।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे संतोष दिवाकर। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ताहिरा सईद को और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मधुरानी और चंद्रमोहन वर्मा।

सुबह 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी। इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा जयदीप घोष का सरूद पर बजाया राग परज बसंत।

दोपहर 1:30 पर सुनेगा छत्तीसगढ़ी नाटक हंसा नियाओ। लेखक श्री जीवन यदुराही और निर्देशक मिर्जा मसूद। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल इस क्रम में विश्व युवा कौशल दिवस पर चर्चा, पत्र मिला और यादें।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में लीजिए सुनिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों का अगला भाग।
1: पहले मैं लोकमान्य से मिला, उन्होंने कहा सब दलों की सहायता प्राप्त करने का आपका विचार बिल्कुल ठीक है, आपके प्रश्न के संबंध में मतभेद हो ही नहीं सकता, परंतु आपके काम के लिए किसी तटस्थ सभापति की आवश्यकता है, आप प्रोफेसर भंडारकर से मिलिए। यूं तो वह आजकल किसी हलचल में पड़ते नहीं हैं, पर शायद इस काम के लिए हाँ कर लें, उनसे मिलकर नतीजे की खबर मुझे कीजिएगा। मैं आपको पूरी पूरी सहायता देना चाहता हूँ, आप प्रोफेसर गोखले से भी अवश्य मिलिएगा, मुझे जब कभी मिलने की इच्छा हो ज़रूर आइएगा। लोकमान्य के ये मुझे पहले दर्शन थे, उनकी लोकप्रियता का कारण मैं तुरंत समझ गया। वह मुझे रिबन कॉलेज ले गया, वह बहुतेरे प्रतिनिधि ठहरे हुए थे, सौभाग्य से जिस विभाग में मैं ठहरा था वही लोकमान्य भी ठहराए गए थे। मुझे ऐसा स्मरण है कि वह एक दिन बाद आए थे, जहां लोकमान्य होते वहां एक छोटा सा दरबार लगा ही रहता था। यदि मैं चितेरा हूं तो जिस चारपाई पर वह बैठते थे उसका चित्र खींचकर दिखा दूं, उस स्थान का और उसकी बैठक का इतना स्पष्ट स्मरण मुझे है। उनसे मिलने आने वाले असंख्य लोगों के नाम मुझे याद हैं, अमृत बाजार पत्रिका के स्वर्गीय मोती बाबू, इन दोनों का कहकहा लगाना और राजकर्ताओं के अन्याय संबंधी उनकी बातें कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस विशेष अधिवेशन के अवसर पर मुझे लोकमान्य की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा खटकी थी। आज भी मेरा ये मत है कि अगर वे जिंदा रहते तो अवश्य ही कलकत्ता के प्रसंग का स्वागत करते, लेकिन अगर ये नहीं होता और वह उसका विरोध करते तो भी वह मुझे अच्छा लगता और मैं उससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करता।

मेरा उनके साथ हमेशा मतभेद रहा करता, लेकिन ये मतभेद मधुर होता था। उन्होंने मुझे सदा ये मानने दिया था कि हमारे बीच निकट का संबंध है। ये पंक्तियाँ लिखते हुए उनके अवसान का चित्र मेरी आँखों के सामने घूम रहा है। आधी रात के समय मेरे साथी पटवर्धन ने टेलीफोन द्वारा मुझे उनकी मृत्यु की खबर दी थी। उसी समय मैंने अपने साथियों से कहा था, मेरी बड़ी ढाल मुझसे छिन गई। इस समय असहयोग का आंदोलन पूरे जोर पर था। मुझे उनसे आश्वासन और प्रेरणा पाने की आशा थी। आखिर जब असहयोग पूरी तरह मूर्तिमान हुआ था, तब उसका क्या रुख होता सो तो दैव ही जाने, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि देश के इतिहास की इस नाजुक घड़ी में उनका न होना सबको खटकता था। आपका यही सवाल है ना, लोग षठम प्रति षाठ्यम को तिलक महाराज का सिद्धांत मानते हैं और हमें उनके जीवन में इस सिद्धांत की प्रतीति कहाँ तक होती है। हम इस प्रश्न में से बहुत अधिक सार ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, इस बारे में तिलक महाराज के साथ मेरा कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार हुआ था। उनके जीवन के नम्र विद्यार्थी और गुणों के एक पुजारी के नाते मैं कह सकता हूँ कि तिलक महाराज में विनोद की शक्ति थी। विनोद के लिए अंग्रेजी में ह्यूमर शब्द है। अब तक हम इस अर्थ में विनोद का उपयोग नहीं करने लगे हैं। इसी से अंग्रेजी शब्द देकर समझाना पड़ता है। अगर लोकमान्य में ये विनोद शक्ति न होती तो वे पागल हो जाते, राष्ट्र का इतना बोझ वह उठाते थे। लेकिन अपनी विनोद प्रीति

के कारण वह स्वयं अपनी रक्षा तो कर ही लेते थे, दूसरों को भी विषम स्थिति में से बचा लेते थे। दूसरे, मैंने ये देखा कि वाद विवाद करते समय वे कभी कभी जानबूझकर अतिशोक्ति से भी काम ले लेते थे। प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में मेरा उनका जो पत्र व्यवहार हुआ था वह मुझे ठीक ठीक याद नहीं, आप उसे देख लें।

श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरी समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म बाजीगर में बोल नवाब आरजू के संगीत अन्नू मलिक का।

संगीत निर्देशन में ये था नवाब आरजू का लिखा गीत। फिल्म बाजीगर के लिए स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याज्ञिक ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

20 साल बाद इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत को फिल्म माशूक में, शब्द रचना गौहर कानपुरी की और धुन बनाई है श्याम सुरेंद्र ने।

0: अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को भी आपने सुना फिल्म माशूक में। शब्द रचना गौहर कानपुरी की थी और धुन बनाई थी श्याम सुरेंद्र ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्थल बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को
1: कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए
4: कहिए कहिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेल।

बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरोज, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, अभिजीत और उदित नारायण को बोल समीर के, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का, और फिल्म का नाम है ये दिल लगी।

ये दिल लगी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था लता मंगेशकर, अभिजीत और उदित नारायण ने। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी दिलीप सेन समीर सेन ने। इस गीत के साथ ही क्षेत्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में 10:30 पर क्षेत्रपट संगीत का पुनः आनंद ले सकेंगे।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं संतोष दिवाकर, संगतकार हैं तबले पर अरुणाभ सरकार, हारमोनियम पर तारेंद्र प्रसाद सेन। पहले सुनते हैं संतोष दिवाकर के स्वर में डॉक्टर बशीर बद्र की ये गज़ल।

0: संतोष दिवाकर की आवाज़ में ये थी डॉक्टर बशीर बद्र की गज़ल। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संतोष दिवाकर को। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर बशीर बद्र की ये गजल।

0: संतोष दिवाकर की आवाज में थी डॉक्टर बशीर बद्र की गजल। संगतकार थे तबले पर अरुणाभ सरकार, हारमोनियम पर तारेंद्र प्रसाद सेन। संतोष दिवाकर को आप पुनः सुन सकेंगे सांध्यकालीन सभा में 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए कल विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर हर वर्ष लोक कला अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की और सीएजी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां सामने आई। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कल राज्य सरकार द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दशकों तक नक्सल हिंसा ने विकास, शिक्षा और जनजीवन को प्रभावित किया। अब बस्तर शांति और विश्वास के नए दौर की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस, स्थानीय जनसहयोग और पुनर्वास नीति से निर्णायक सफलता मिली है। कांग्रेस सदस्य इस चर्चा के दौरान सदन से बाहर रहे और चर्चा में भाग नहीं लिया। आज बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेसर्स यूनिकोड इंडिया लिमिटेड कंपनी की अमानक दवा के क्रय से संबंधित मामला उठाएंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मलाल कौशिक प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन से संबंधित मामला उठाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरणदास महंत और कांग्रेस के अन्य विधायक इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार किए जाने की ओर वन मंत्री केदार कश्यप का ध्यान आकर्षण के माध्यम से ध्यान आकर्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मूणत ध्यान आकर्षण के माध्यम से शासकीय मुद्रणालय के प्रिंटिंग कार्य में किए गए अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन में आज 3 महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ ही कल पेश किए गए 4 बिल पर चर्चा प्रस्तावित है। इसके अलावा आज सदन में कई शासकीय कार्य भी निष्पादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में आयोजित पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉ. तीजनबाई के दशगात्र और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ. तीजनबाई की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को राज्य सरकार चिरस्थायी बनाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्योत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष डॉ. तीजनबाई लोक कला अलंकरण प्रदान किया जाएगा। साथ ही गनियारी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा और उनके तंबूरे को रायपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी कला साधना से प्रेरणा ले सकें। महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2024 तक राज्य में स्वीकृत 29,153 एकल और बहुग्राम जल योजनाओं में से केवल 172 एकल ग्राम योजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। इसमें भी मात्र 32 योजनाएं ही ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई हैं। जल गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था पर भी सीएजी ने चिंता जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके अगले 24 घंटों में निम्न दाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन में सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण रायपुर, बिलासपुर और गेवरा रोड के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेनें 18 और 19 जुलाई को रद्द रहेंगे। वहीं गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी, गोंदिया और बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए कल विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर हर वर्ष लोक कला अलंकरण सम्मान देने की घोषणा की और सीएजी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां सामने आई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे ने। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादे।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को